0: क्योंकि आपके आस पड़ोस वाले जानने वाले सब ले चुके हैं आपका, वो अगर उन्होंने बताया नहीं तो आपसे छुपा रहे हैं वो।
1: एंड सरांश, जिहड़े नवें लिसनर्स ने उन्होंने भी क्विक मैसेज दसो कि फंडिंग ते स्पेशली ग्रांट्स दा सुन के अनादर जिवें कोई हिडन है, कोई इहदे विच हेरा फेरी आए किवें पैसे बन सकदे आ, सो इहदी भी कोई तुसीं इनफॉर्मेशन दो।
0: फंडिंग का वर्ड सुन के हमें लगता है कि कुछ कैच होगा, कुछ हिडन होगा, बिल्कुल लगना भी चाहिए यस, बट हम सिर्फ एजुकेशन की फंडिंग में डील करते हैं जिसमें लाइक कुछ एंड टू एंड कुछ भी दिक्कत है ही नहीं। आप स्किल डेवलप करते हैं, गवर्नमेंट आपको आपके खाते फंडिंग देती है, जितनी आपकी इनकम कम है, ज्यादा नहीं चाहिए इनकम, ज्यादा इनकम है तो कॉल करेंगे तो हम यही कहेंगे कि आप एलिजिबल नहीं है। जिनकी इनकम एनओए पे कम है, सेल्फ एम्प्लॉयड, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, हाउसवाइफ, अनएम्प्लॉयड, $70,000 से कम है जिनका नोटिस ऑफ असेसमेंट, वो ही कॉल करें, उन्हीं को फायदा है। और लाइक इसमें सारे कागज असली लगते हैं आपके, आपका एनओए, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, तो कोई इसमें हेरा फेरी एडिटिंग है ही नहीं। जहाँ हेरा फेरी नहीं, वहां पे कमीशन भी नहीं है, सेटिंग भी नहीं है, साफ काम है, साफ तरीके से 8 साल से कर रहे हैं। ऑफिस आए 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड पे, एनरोलमेंट कराएं, ग्रांट सिर्फ अभी तक वैलिड है, उसके बाद ग्रांट्स नहीं आएंगी।
1: 4372643175 नंबर है, ते तुसी जिहड़ी फीस लेने हो 199 या 499 काम होने तो बाद लेने हो, इहदी भी जानकारी दे दो।
0: हाँ जी, फीस हमारी काम होने के बाद है तो ईमानदारी आपकी चेक होती है। आसान से कोर्सेज करें 2 से 3 घंटे, लाइक असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन नहीं है, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ईसीए, पीएसडब्ल्यूएस से कोर्सेज करें, फंडिंग हासिल करें। गवर्नमेंट आपको आज की डेट में ग्रांट्स के रूप में ह्यूज फंडिंग दे रही है, $30,000 से $100,000, फैमिली ऑफ टू अप टू 45,000, फैमिली ऑफ फाइव अप टू 100,000। अब इसमें से जो फंडिंग का जो मैंने आपको नंबर्स दिए हैं, इसका हाफ पोर्शन ग्रांट्स है, नॉन रिफंडेबल, वापस नहीं करना पैसा इस हफ्ते तक। अगले हफ्ते एनरोल करेंगे तो आपको लोन नहीं आएगा, तो अभी एनरोल करें, ऑलरेडी बहुत लोग की हाल है चुके हैं, पीछे ना रहो, नुकसान ना कराओ।
1: वेरी गुड, नंबर दो अपना।
0: नंबर जी 437-264-31-75, हुणे भी तुसी कॉल कर सकते हो, स्टाफ रेडी है जी, 437-264-31-75, 4372643175, 437-264-31-75 कॉल करो तो ऑफिस आओ।
1: 4372643175, 4372643175। Suresh, shukriya sir, thank you so much. Thank you, so program hai Punjabi da, number hai apna studio da 905-673-337-905-673-3337. So apne kol kuch comment ne main hega haje itthe, te number hai 905-673-337. एक तुसी गुरकर्म ढींड सानू याद रखो, गड्डियां या घर की इंश्योरेंस करवानी है ना, हजारां साढ़े लिसनर्स की इंश्योरेंस घटा के दी है गुरकर्म ने। नंबर है 416-876-4605-416-876-4605, 416-876-4605, गुरकर्म ढींड सा 416-876-3605। एक थोनू मैसेज देना, ब्रैम्पटन क्रेमेटोरियम वालों का, तुसी हुण अपने फ्यूनरल दी प्री प्लैनिंग कर सकते हो, थोड़े फ्यूनरल दी प्री प्लैनिंग दे बड़े बेनीफिट ने। अज दा रेट लॉक हो रहा, फ्यूनरल दी प्री प्लैनिंग करनी है तो एक एक नंबर तुसी याद रखो, 905-458-2222, 905-458-2222, फ्यूनरल दी प्री प्लैनिंग अज दा रेट लॉक करो तो तुसी जानकारी लो एंड गलबात जरूर कर सकते हो वन एंड ओनली ब्रैम्पटन क्रेमेटोरियम की टीम के नाल। सो स्टूडियो का नंबर है अपना 905-673-3337, 905-673-3337 ते गल्लां बातां थोड़ियां साड़ियां हो रही ने। एक मैं मैसेज दे दा लवाना वैलनेस स्पा वालों का, तुसी हाइड्रा फेशियल करवाना, हुण इह लिप फिलर भी करते हैं, डरमा फिलर भी करते हैं, वैक्सिंग करवानी है, बॉडी हेयर रिमूवल है, एक बार तुसी विजिट करना लवाना वेलनेस स्पा, 341 पार्क हर्स्ट स्क्वेयर, एयरपोर्ट रोड ते स्टील्स दे कोर्नर ते, तुसी एक बार गेड़ा जरूर मारो, थोड़े लिए हाजिर ने। फोन नंबर है, फोन नंबर है 416-881-5385, 416-881-5385 दे उत्ते गलबात तुसी करो।

सतगुर होए दयाल तसरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल नकाब हूँ चूरी है, सतगुर होए दयाल तदुखना जानी है, सतगुर होए दयाल तहार रंग माणी है। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके हैं जी एक बार फिर यह खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान लैके। मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ स

0: सीवी रेडियो उड़ान ते अपने बिजनेस नु करो प्रमोट। आज ही अपनी एडवरटाइजमेंट बुक करने लिए कॉल करो प्रभ संधु होरा नु 4378700001 4378700001।
1: So, बिल्कुल जी समा हो चुकिया थोड़ा साडा इत्थे वादा साडा जिहड़ा वो टाइम वादा हो गया थोड़े नाल बाय बाय करन दा। सो कल नूं मिलदे आं इसे वेले इसे समय। सो भुल्लियो ना मुस्कुराउणा, हासे आवाज़ रखियो।
2: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
3: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
2: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
3: तुम्हें ये सब कैसे पता?
2: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
3: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
2: save onenergy.ca/eap।

गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कह सेवक जन माना पर तख गुरु निस्तारे सत नाम

चरण कमल से ओ प्यार, मन तन रत्ता सच रंग, इको नाम आधार, सावन सरसे का मणे, चरण कमल से ओ प्यारा।

0: शादी दी मूवी बनवाने ली या रिंग सेरेमनी ली, वेडिंग एनिवर्सरी, जागो, प्री वेडिंग, बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट कर ली। याद रखो, देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने। बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नो 416-930-1251 416-930-1251।
1: ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ, ਚੰਗਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ?
2: ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੁਆਲਟੀ ਟਰੱਕ ਸੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ। 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਓ।
0: ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਹੈ ਕਾਬਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਟਰਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ
2: 416-717-2929
0: 416-717-2929 ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ, 14 ਸਟੇਨਵੇ ਬੁਲੇਵਰਡ, ਯੂਨਿਟ 4, ਇਟੋਬੀਕੋ।
3: मिलना इवेंट्स लेके आ रहे ने तुहाटे वास्ते रू का सफर टूर। जी हाँ, लाइव मास्टर सलीम कॉन्सर्ट इन टोरंटो 24 जुलाई नो मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर दे विच।
4: मैं के अचन जी सलाम तीने आ।
3: सिर्फ से सिर्फ मिलना इवेंट्स दे नाल। ता फिर देर किस गल दी, तारीख नोट कर लो 24 जुलाई। अपनी टिकटा आज ही बुक करो। लॉग ऑन करो www.milnatickets.com ते। स्पॉन्सरशिप अते होर किसी भी जानकारी लई तुसी रोहन शर्मा अते प्रभ संधु नू कॉल कर सकदे हो 647-783-9873 या 437-870-0001 ते।

0: हो सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
1: ले आपा हुणे करदे आ संधु साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
0: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जितेंद्र संधु नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 6477066640
1: 647-706-4640।
2: पाजी आज घरे तंदूरी बनाओ पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आना ओ करे नहीं बन पाउना।
3: हाय गाइस एंजॉय करो तंदूरी बॉयज वेज नॉन वेज स्वादले तंदूरी खाने ले पहुंचो तंदूरी बॉयज।
4: सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट। पार्ट जागो अते वेडिंग ले आज ही कैटरिंग बुक करो 9059562111 9054519200 serving you from 3 locations।

0: बात है नई सर जी 9257 हेलो
1: हाँ जी हाँ जी नवीदान
0: सत श्रीकाल जी किवें हो
1: ठीक है जी एयर क्वालिटी तो बहुत बैड हो गई
0: चलो कर देंगे ठीक है
1: देखो कदम आंदी है जी नॉर्थ सिंगे कल
0: अच्छा
1: सारा येलो
0: हो गया तुसी किस एरिया च सीगे
1: कोल्ड वाटर जी
0: कोल्ड वाटर अच्छा
1: हाँ जी
0: ਨਹੀਂ ਨੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਜੋਬ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ
0: ਅੱਛਾ
1: ਹਾਂ
0: ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ
0: ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਏਰੀਏ ਚੋਂ
1: अपना कड़ी पानक दा घगरा जा करो तेरा
0: वाह ला दिने देखो मैं थोड़े टाइम है कोई ना मैं कोशिश करता ठीक है ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਸਰਾਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਂਸਰਡ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਆਪਣੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਕੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ
2: ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਗਰ ਆਪਕਾ ਸਟੇਟਸ PR ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਆਪਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ ਲੈਸ ਦੈਨ $70,000 ਹੈ 2024 ਕੇ NOA ਮੇ ਦੈਨ ਆਪ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਕਹੀਂ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਮੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਆਸਾਨ ਸੇ ਫੁੱਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰੇ ਨੋ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੇ ਹੈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਔਰ ਨੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ नो कोलैटरल और 30,000 to 100,000 की फंडिंग बिना कोलैटरल के बिना क्रेडिट चेक आप अपने अकाउंट में हासिल कर सकते हैं जिसका मेजर पोर्शन आज की डेट में हाफ पोर्शन जो आपकी फंडिंग बनती है उसका पोर्शन नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स है ऊबर ड्राइवर ट्रक ड्राइवर सेल्फ एम्प्लॉयड है ज्यादा बेनिफिट है अनएम्प्लॉयड है और भी ज्यादा बेनिफिट है 2 to 3 hours आराम से कोर्सेज करें स्किल डेवलप करें मैनेजमेंट के कोर्सेज करें फुली ऑनलाइन घर के कम्फर्ट से असाइनमेंट से एग्जामिनेशन नहीं है स्किल भी हासिल करें फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करें डायरेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट
0: वेरी गुड सरांश का नंबर है 437-264-3175 437-264-3175 ਤੇ ਸਰਾਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ 2 ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ 5 ਹੈ
2: अगर फैमिली ऑफ टू में मान के चले रिटायर्ड कपल है या फिर यंग कपल है उनकी 45,000 की फंडिंग बनती है 25,000 तो ग्रांट का पोर्शन है जो रेस्ट है वो लोन है 0% पर 1.5 साल बाद पे ऑफ करना होता है पे ऑफ करना स्टार्ट करना होता है अगर फैमिली ऑफ 5 है तो 100,000 की फंडिंग बनती है अगर हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे हैं उनके उसमें से $50,000 तो नॉन रिफंडेबल ग्रांट है जो रेस्ट 50,000 है आपने लाइक 10 to 15 साल में पे करना है शुरू में 0% 1 साल तक और बाद में 2.5% साल का ब्याज है सिर्फ बिना क्रेडिट चेक के बिना कोलैटरल के तो आप इस फंडिंग को हासिल करें सिर्फ सैटरडे तक टाइम रह गया है नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से गवर्नमेंट ग्रांट्स में ह्यूज कट्स कर रही है नो एज लिमिट नो क्रेडिट चेक
0: एंड थोड़ी कितनी फीस है सरांश से कदों देनी है फीस
2: हाँ जी 8 साल से काम कर रहे हैं बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं जी कोई इसमें कुंडी नहीं है कोई कमीशन सेटिंग नहीं है कोई कागज की हेराफेरी नहीं है गवर्नमेंट को कागज सबमिट हो रहे हैं कोई कैच नहीं है NOA लगता है आपका बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट मैरिज सर्टिफिकेट तो सेटिंग नहीं है तो कोई कमीशन नहीं है छोटी सी फीस है 199 या 499 डिपेंडिंग ऑन कोर्स कब देनी है काम होने के बाद लास्ट वीक 28 बंदों की फंडिंग गिरी है तो अब वो हमारी फीस देंगे छोटी सी फीस अपनी ईमानदारी से उनकी ईमानदारी चेक हो रही क्लाइंट्स की ईमानदारी चेक होती है तो कॉल करें ऑफिस है 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड में और लाइक सिर्फ जैसा मैंने कहा सिर्फ थोड़े दिन ही रह गए उसके बाद लोन आएगा ग्रांट नहीं आएगी अभी एनरोल करें फायदा लें 437-264-3175 437-264-3175 उन्हें कॉल करें तो एस्टिमेट लो 437-264-3175 अपना नुकसान ना कराएं फंडिंग ले जो क्योंकि आपके आस पड़ोस वाले सब लोग ले चुके हैं
0: वेरी गुड 437-264-3175 437-264-3175 थैंक यू सरांश ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਮਨ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਈਏ, ਟੀਮ ਹਰਮਨ ਬੱਤਾ ਸਾਡੀ ਨੰਬਰ ਵਨ ਮੋਰਗੇਜ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ। ਅਗਰ ਮੋਰਗੇਜ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਹਰਮਨ ਤਾਂ ਕਰਾਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਹੋਗੇ ਨਵੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ 647-685-9000 ਨੰਬਰ ਹੈ 647-685-9000 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰਮਨ ਨੂੰ 647-685-9000। ਈਗਲ ਟਰੱਕ ਟਾਇਰ ਰਿਪੇਅਰ ਐਂਡ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਓਇਲ ਚੇਂਜ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਸ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ ਈਗਲ ਟਰੱਕ 10874 ਸਟੀਲਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਈਸਟ ਸਟੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਜੇਮਸਨੋ ਪਾਰਕਵੇ ਦਾ ਕੋਰਨਰ ਹੈ, ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 401 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 6472-34-6293 ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਿਊ ਹਾਈਟਸ ਕਿਚਨ ਦੇ ਜਸਪਾਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਟੋਪ ਟੋਪ ਟੋਪ ਦੀ ਕਿਚਨ, ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ, ਕਾਊਂਟਰ ਟੋਪ, ਵੈਨਿਟੀਜ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਨਿਊ ਹਾਈਟਸ ਕਿਚਨ 416-859-1920-4168591920। ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਾਣਾ, ਭਾਜੀ ਦੋ ਕੁ ਬੋਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਹ

0: कि तुसी भी इन्वेस्टमेंट दे इस दौर प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना चाहते हो कि तुसी भी प्रॉफिटेबल आउटकम ले प्रॉपर्टी लभ रहे हो फिर फेयर डी रियल्टी रिप्रेजेंट्स आउटस्टैंडिंग फार्म हाउस 28 एकड़ लैंड विद टू रोड फ्रंटेजेस डबल कार गैराज ग्रीन हाउस एंड वर्कशॉप यही नहीं 407-418 हाईवे तो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी ते फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स कॉल द बेस्ट टीम फेयर डी रियल्टी ब्रोकर ऑफ रैकेट हरदीप पंदेव एंड 905-671-2000 905-671-2000
1: You are listening to your favorite radio show, Radio Awaz, The Voice, Zindabad, Zindabad. For advertising, please call 416-518-3200.
2: जे टाइम दी सेविंग करना चाहते हो तो पहुंचो ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश लिमिटेड जिथे तुसी ट्रक वॉश ट्रक ऑयल चेंज ते रिपेयर एक ही रूफ थले करा सकते हो इत्थे बहुत सारे स्पेशल ऑफर्स चल रहे ने जिवें ऑयल चेंज नाल ट्रक वॉश सिर्फ $45 तुसी कैट दी बैटरिया विद इंस्टॉलेशन चेंज करा सकते हो एट $850 सारियां रियर ड्रम and rear brake change at $750 and AC recharge is at just $180 so reach out to them call at 905-452-9955 inada address hai 71 Stafford Drive Brampton they right now a hiring bhi kar rahe ne je tanu truck mechanic da koi experience hai you can call them their number is 905-452-9955
3: F-154 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਟਰੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ F-150 ਜਾਂ ਮਸਟੈਂਗ ਜਾਂ ਲਿੰਕਨ ਜਾਂ ਫੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਨਲ ਚੋਪੜਾ ਰੋਹਨ ਚੋਪੜਾ ਚੋਪੜਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਚੋਪੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੌਪ ਸੇਲ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਚੋਪੜਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-302-4141
4: ड्राइव कर रहे हो शो नो एंजॉय कर रहे हो कुछ भूल रहे हो
5: ड्राइविंग लाइसेंस
4: नो
5: पुलिस ऑफिसर
4: नो नो
5: ट्रैफिक लाइसेंस
4: नो
5: देन
6: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज ना काम कर रहे पवन कौर गिल 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकदी है ऑटो होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी 647-325-9900 647-325-9100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस
3: हो जाते हो बहुत सारे पेंटर्स से पेंटिंग कंपनी दे नंबर पर तुसी रियल्टी पेंटिंग नो क्यों नहीं चुनोगे फायर स्टेशन 5 स्टार होटल्स बिल्डर दे कस्टम कार्स या सरकारी इमारतां नो पेंट कर चुके हैं ना उत्थे तुहाडे घर नो 24 घंटियां दे अंदर अंदर पेंट कर दिंदे हन इन्हां दा रेट इन्हां दी क्वालिटी नो कोई भी मैच नहीं कर सकदा 7 साल दे कीते हुए काम दी गारंटी होवेगी फ्री एस्टीमेट लई सुखमन नो कॉल कर सकदे हो 416-816-8400 1-416-816-8401
7: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने ते कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जांदी है पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस दे लई लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस तुहानू डेट नू प्रॉपर्ली असेस करन मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाण विच हेल्प करदे ने इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो ज्यादा इंफॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200 416-518-3200
8: रियल एस्टेट दी दुनिया विच आओ अपने सुपनिया नु सच कर विखाओ फेयर डील रियलिटी इंक ब्रोकरेज नाल हाथ मिलाओ
9: रियल एस्टेट दियां बारीकियां सीखो ते कंपनी वलो क्लाइंट्स लीड्स भी पाओ
8: फेयर डील रियलिटी इंक ब्रोकरेज नवे एजेंट हायर कर रहे ने
9: आज ही कॉल करो फेयर डील दे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड हरदीप पंदेर नु
8: 905-671-2000
9: फेयर डील नाल हाथ मिलाओ अपने सुपनिया नु सच कर विखाओ
10: ऑटो ओनर्स क्या आप ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं या फिर नया ड्राइवर ऐड करने के बाद आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बढ़ गया है अगर आपके पास जी या जी टू लाइसेंस है और कनाडा में 3 सालों का इंश्योरेंस एक्सपीरियंस है तो टेंशन मत लीजिए
11: ऑल स्टेट इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया को आज ही कॉल करें जो आपको अच्छा प्रीमियम ऑनेस्ट एडवाइस और ग्रेट सर्विस भी देंगे अपनी होम और ऑटो इंश्योरेंस का पैकेज बनवाएं और अप टू 30% तक बचाएं ऑल स्टेट इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया 647-656-2810 That is 647-656-2810.

0: at Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600.
1: ओह यार, बिजनेस का माड़ा हाल होया पे। कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
2: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं।
3: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
4: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
5: रेडियो आवाज,
6: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

0: रात हमें छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चले स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर, जेडे कर देने मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर।
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज, जेना दिया जीडीए दे विच चार लोकेशन ने, मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी।
1: जी हां, कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रका दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है। रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878।
2: बम्बा गया मैं जिते जावां मुंडे कहंदे बम्बा गया।

0: 10 सेंट बढ़ गया आज, मतलब 2 दिन मिला के टोटल। उसे तो रोक नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे फंडिंग हासिल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा रिफ्यूजीज पे, यूक्रेन पे इतना पैसा लगा रही है, हेटी पे $1.9 बिलियन आप पे इन्वेस्ट करें तो आपको लगता है कुछ कुंडी होगी। हमारी फीस 199 या 499, काम होने के बाद फंडिंग आपके अकाउंट में आ रही, हमारे में नहीं आ रही। ऑफिस आए हमारे, कोई कुंडी नहीं है, कोई कैच नहीं है, कोई चलाकी नहीं है, सब भूल जाओ चलाकी अपनी।
1: अच्छा,
0: कुछ
1: कोई
0: हमें
1: हिडन
0: ईमानदारी से
1: फीस तो
0: आसान
1: नहीं
0: होकर
1: है?
0: पता
1: जैसे
0: चल
1: आप
0: चुके
1: बता रहे हो आपकी 199 या 499 तक फीस है, तो कोई और हिडन चार्जेस तो नहीं है? क्योंकि बाद में कई बार कहने लग जाते हैं, अभी ये भी है जी।
0: जो मीठी बातें करते हैं ना, मतलब क्लाइंट आते बताते सर मीठी बातें करते हैं और आप मतलब तंग करते हैं हमारा। और मैं वो देख क्लाइंट आता सर हिंदी में ही कहा करो, पंजाबी पे भरोसा कम होता है हमें तो इसलिए मतलब कोई चलाकी नहीं है सर। बहुत लोगों से कर चुके हैं, लोग आके कहते हैं हमें कि $3,500 लोग पहले ले लेते हैं, 2,500 पहले ले लेते हैं। हमारे में छोटी मोटी फीस है, लोग वो भी मार लेते हैं कभी कभी 5% लोग है ना। लेकिन तो हम अपनी फीस बाद में रखते हैं, हमें कोई चलाकी नहीं करनी। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने किसी के पैसे देने हैं, मतलब हम जरूर कह सकते हैं कि लोगों ने हमारे पैसे दे रहे हैं, तो अभी तक हमारे लाइक किताब लोगों ने पैसे नहीं दिए, $200 भी खा जाते हैं लोग तो इसलिए। लेकिन आपकी तरफ हम आपकी साइड है, आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, आप फंडिंग हासिल कर रहे हैं, आपका फायदा हाथ ही जितना है सर। कोई चलाकी नहीं है, हमें नुकसान हो सकता है आपको नहीं सकता। मैं स्ट्रेटेजी प्लान ही इस तरह करा है इस बिजनेस को, तो 8 साल से कर रहे हैं, कोई कुंडी नहीं है। अगर चलाकी होती तो हम महीने के 4 क्लाइंट लेके कमीशन लेके सो जाते,
1: जी
0: कोई कमीशन इतना बन जाता है राइट। तो कॉल करें, नंबर नोट करें, अभी कॉल करें 437-264-31-75, 437-264-31-75, थोड़े कॉल करो तो एस्टिमेट लो। फैमिली साइज ज्यादा है, इनकम जितनी कम है उतना ज्यादा फायदा आपको है, आपको हमारी चीज तो सेम ही रहती है, आप ही तो कोई और दे देगा। 437-264-31-75, 437-264-31-75। ऑफिस एड्रेस 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड है, हरिहर डेयरी पे। इसी हफ्ते तक ये चीज वैलिड है, सैटरडे तक बस। उसके बाद आप ब्रांड फॉरवर्ड नहीं सुनेंगे हमसे, तो ये मत कहना कि आपने बोला था हमने सुना था ना। 437-264-31-75 कैसे पे नहीं मिलते, 1,000 स्क्वेयर फट का ऑफिस है, 8 घंटे काम कर रहे हैं, आए मिले सबसे। 437-234-31-75, 437-264-31-75।
1: जी बिल्कुल, थैंक यू सरांश ते। बिल्कुल जी, तुसी जरूर गलबात सरांश ना करो, 437-264-31-75 ते गलबात हो सकती है। ते लो जी अपन नेक्स्ट कॉल लेने हैं। हां जी कमल जीत जी, की हाल चाल?
2: हाँ जी सत श्रीकाल जी।
1: हाँ जी सत श्रीकाल।
2: अर्जेंटीना फाइनल पहुंच गए जी फिर
1: अर्जेंटीना पहुंच गए, थोड़े फेवरेट है
2: जी, मेरे ऑलवेज फेवरेट है जी। 1990 का तुम्हें दसिया जी, देखो ना जरा अपने मैसी है ना, हुँ। इस गेम दे विच उन्हें 2 असिस्ट दिते ते वो 2 गोल हुए, और हमेशा ही किनिया हेड उन्हां दी मिस हुई। जरा दूजा गोल होया राइट लेफ्ट राइट आउट जरा सगा वो लेफ्ट से बॉल लंदा सी, और बॉल उन्हां दी हमेशा मिस हो रही सी, 5-6 शॉट मिस हुए। और फिर तो बाद की होया दोबारा फिर उसे ही मतलब राइट वाले ने लेफ्ट की बॉल दिती है लेफ्ट विंग से, और हेड का वो गोल होया एंड दे मेरे। पिछले मैच दे विच भी इस तो पहले क्वार्टर फाइनल सी उसे विच भी मैसी दे 3 असिस्ट गए और 3 गोल हुए। सो मैसी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और वो टीम लिए खेलता ना कि इंडिविजुअल। तो बाकी मेरा तो फाइनल जीत लिया जी, तो पार्टी तो निवल हो गई है, हम देख लो कि करनी है
1: ठीक है पार्टी जी करेंगे।
2: हाँ जी
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: जी
1: जी
2: जू मतलब बाकी 100 का महीना तुझे क्या चल गया, तो एक गाना ला दी साढ़े पिंड तो लाल पधियानवी का लिखे आया, 100 महीने वजे छुट्टी आए फौजी आए, सुरिंदर शिंदा के गोस्टर कोमल का गाया हुआ गीत है जी,
1: ठीक
2: है अराउंड 1982-83 का।
1: अर्जेंटीना दी टीम है ना, जब पिछले 10-15 मिंट बचते है ना फिर बड़े तेज हो जाते हैं। पहला भावे उन्होंने गोल नहीं किया, पहला तो चलो इंग्लैंड वाले ने करता ते उदो लग रहा सी भी सही है, पर ओ तो बाद जो फिर 10-15 मिंट रह जाते ना फिर इन्हें बड़ी रफ्तार बड़ी फट दे प्लेयर सारे। बाकी करते हैं गलबात अपना। हाँ जी रेशम भाजी की हाल चाल? हाँ जी सताल
3: भाई, कमल जी के विचार बहुत ही होंगे जी।
1: हाँ जी
3: बहुत वे विचार होंगे जी। मैं एक भाई मिले 25 साल वाला जी।
1: कौन मिले अज?
3: अपना भाई कोई मिले 25 साल मिले जी मैं घुटरी दसी भाई जी।
1: अच्छा
3: 25 साल बाद
1: 25 साल बाद मिले है?
3: हाँ जी देखो अच्छा मैंने पछाण लिया, फिर बाद पता लगे ना हो ही भाई। देखो जी कितना चिर हो गया
1: घुट के
3: जाती।

0: एचके मूवर्स का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। एचके मूवर्स होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज। 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल। एचके मूवर्स, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर, 416-524-6704, 416-524-6704।
1: हासल फ्री मूविंग के लिए एचके मूवर।
2: इस बार गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का आगमन आपके घर ला रहा है ढेरों खुशियाँ। इन खुशियों का स्वागत कीजिए इंडिया सजावट एंड पूजा हट से श्री गणेश जी के ब्यूटीफुल ड्रेसेस लेकर, दुर्बा फ्लावर्स, इको फ्रेंडली स्टैचूज जो हो जाए क्विकली डिसॉल्व इन वाटर। तो इस बार सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं, खुशियों की भी आराधना कीजिए। इट्स ऑल अंडर GTA's बिगेस्ट डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
3: कि तुसी भी अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स नो सुपर वीजा या विजिटर वीजा ते कनाडा लाके आ रहे हो, ते फिर प्लैनेट इंश्योरेंस तो सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर इंश्योरेंस प्लान लाके उन्होंने प्रॉपरली प्रोटेक्शन दे। साड़ी अप्रूवल फास्ट ने, कवरेज तुहाडी नीड के मुताबिक है, ते कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है जिहड़ा, ए सारा कुछ तुहानू मिल सकता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस ते। तुसी मैनू कॉल करो, एदे लई नंबर है 416-524-3535, 416-524-3535, विदेश आबरा फ्रॉम प्लैनेट इंश्योरेंस।

चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रता सच रंग, इको नाम आधार, बिखरा रंग कुड़ावया, दिसण सबे शार, हर अमृत बूंद सुहावनी, मिल साधु पीवन हार, वण तिण प्रभ संग मौलिया, समर्थ पुरख अपार, हर मिलने नो मन लोचदा, कर्म मिलावन हार, जिन्नी सखिए प्रभ पाया हाँ।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. To see cheap flight tickets, si pal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sono chahide ne. Jan tusi visa services di pal de vecho, puri family vacation upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.

0: एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
2: आज खुश तो बात होगी
3: ओ ता होना ही है जो तुटी नो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी आईपीटीवी बॉक्स होवे तैन लगता बनदा ही है।
2: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
3: बॉलीवुड मूवीज ने, टीवी शोज, वेब सीरीज, हिंदी पंजाबी, लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करने को वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है। ते नाले टिल्लो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है, ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। और दस क्या चाहिए था?
4: क्यों कह रहे हैं यहाँ पर?
3: ओ पाजी, सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
3: पर टिल्लो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ, एबनीजर एंड गोर रोड 905-204 13-13 जां tillovideo.com। होर कोई सेवा?
6: ओ पंजाबी बोले ना ते मैं इंग्लिश विच अड़दा सी, ओ मेरी लुक ते मरदी सी ते मैं ओदे लक ते मरदा सी। सत श्री अकाल जी, मैं हां थोड़ा अपना रोशन प्रिंस ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो।

0: का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap

0: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
1: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
2: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते।
0: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
3: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.desparadesradio.com ਜਾਂ www.desparadestv.com। ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ TV ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7।

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
2: S&S Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई अज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000।
3: Get ready! GTA